अध्यात्म ज्योति 104.8 सिल्वर पैलेस विश्वसनीय सुरक्षित र भर पर्दो स्वदेशी श्रम र सिपबाट निर्मित आकर्षक डिजाइन का मिसावट रहित चाँदी का एक्सक्लुसिव गहना लगायत भाँडाहरू विवाह लगायत अन्य अवसर का लागि चाहिने चाँदी का सामानहरू को लागि सिल्वर पैलेस न त ठगिने डर न मिसावट को चिंता हरेक सामान मा 100% शुद्धता को ग्यारेन्टी दिने एकमात्र सिल्वर पैलेस पसल नंबर 15 विशाल बजार न्यू रोड एवं प्युखा न्यू रोड होलसेल तथा रिटेल सेवा

कार्यक्रम भजन दीपांजलि प्रत्येक सोमबार सुमधुर भजन का साथ में बिहान 8 बजे देखि 9 बजे सम्म सुन्न सक्नुहुनेछ केवल एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8 MHz मा। यस कार्यक्रम का प्रायोजक उच्च स्तरीय प्रविधि द्वारा स्वदेशमै निर्मित चाँदी का हर एक प्रकार का सामग्री का लागि प्रसिद्ध सिल्वर स्टेट धर्मपथ न्यू रोड काठमाडौँ। कार्यक्रम भजनांजलि प्रत्येक मंगलवार बिहान 7 बजेदेखि 8 बजे सम्म अवश्य सुन्नुहोला केवल एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8 MHz मा। प्रत्येक मंगलवार बिहान 8 बजेदेखि 9 बजे सम्म सर्व मांगलिक कामना का साथ में कार्यक्रम सर्व मंगलम सुन्न सक्नुहुनेछ केवल एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8 MHz मा। एफएम अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभावहरूले 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क कर सकूने।

0: घर बासमती चामल भान्सा घर उसिना चामल स्वाद र संतुष्टि को लागि
1: क्याप्टेन रेग्मीज फार्म हाउस रेग्मीज फार्म हाउस कमतान को बगैचा बेलकोटगढ़ी मदानपुर 12 देउराली
2: संपर्क नंबर
1: 9141470164
2: 9032445 54
1: 9849 5287

0: गोल्ड पैलेस सुप्रपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: शूटिंग शटर्स मलाई ट्रैक शूट चाहिए
2: मलाई फ्रॉक
3: मलाई पनी सूट
4: अनि मलाई

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैँभरि।
1: FM अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा व उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820, मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क करना सक्नुहुनेछ।

0: जे जे ज्वेलर्स कै किन्नुस
1: जे जे ज्वेलर्स बसंतपुर न्यू रोड दमकल नजिक स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक मुनी संपर्क नंबर 5320711 9802076888
0: जे जे ज्वेलर्स शुद्धता को पहचान one oh four eight

राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैं भरि।

0: एड्रेस सुक्रपथ न्यू रोड काठमांडू, फोन नंबर 42 43 736। सिल्वर स्टेट सभी भन्दा पुरानो चांदी को एकमात्र शोरूम
1: सिल्वर स्टेट यहाँ को सेवा में निरंतर लगी रहेका छौं। त्यसैले त हामी गर्व गर्छौं किनकि हामीले यहाँ को विश्वास जितना सफल भएका छौं।
0: सिल्वर स्टेट अत्याधुनिक प्रविधि बाट आफ्नै कारखानामा निर्मित बिना रसायन का पूजा सामग्री विवाह लगायत अन्य शुभ कार्य का लागि चाहिने यहाँले चाहे बमोजिम का चांदी का हरेक प्रकार का सामग्री लगायत गिफ्ट आइटम का लागि
1: सिल्वर स्टेट एउटै छाना मुनि चांदी का सबै सामानहरू।
0: सिल्वर स्टेट धर्मपथ न्यू रोड काठमाडौँ शाखा शुक्रपथ विशाल बजार को अगाडि, फोन नंबर 4227345 4235556।
2: श्री इन्भेस्टमेन्ट एन्ड फाइनान्स कम्पनी लिमिटेड यहाँको

0: मन शांति आराधना र उपहारका लागि समेत प्रयोग गर्न सकिने कञ्चनजङ्घा अगरबत्ती नेपालको पहिलो ISO सर्टिफाइड अगरबत्ती कम्पनी।
1: कञ्चनजङ्घा अगरबत्ती पवित्र सुवास।
2: FM अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क कर सकूने।

0: गोल्ड पैलेस सुप्रपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: शूटिंग शटर्स मलाई ट्रैक शूट चाहिए
2: मलाई फ्रॉक
3: मलाई पनी सूट
4: अनि मलाई

0: रचावेल चुच्चे पाटी
1: एफएम अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनु हुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क कर सकूने।

0: गोल्ड पैलेस शुक्लपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: एफएम अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820।

0: गोल्ड पैलेस शुक्लपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: FM अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 मा संपर्क करना सक्नुहुने छ।
2: आजकल शुद्धता पाउन कति गाह्रो भइसक्यो।
3: जहाँ हेर्यो त्यहाँ मिसावट छ,
2: त्यसैले शुद्धता नै खोजौ। जेजे ज्वेलर्स प्रस्तुत छ जेजे ज्वेलर्स। जेजे ज्वेलर्समा छ सुन, चाँदी तथा हिराका आकर्षक डिजाइनहरूको उत्कृष्ट कलेक्सन। सुन, चाँदी तथा हिरा जे किन्नुहोस् जेजे ज्वेलर्सकै किन्नुहोस्।
4: जेजे ज्वेलर्स बसन्तपुर न्यू रोड दमकल नजिक स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड ब्याङ्क मुनि। सम्पर्क नम्बर 5311 9800 76888।
2: जे जे ज्वेलर्स शुद्धताको पहिचान।

चमक फूलों में रंगत ना रहेगी, अरे कुछ भी ना रहेगा अगर मोहब्बत ना रहेगी।

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैं भरि।
1: FM AJ 104.8 MHz.

0: गोल्ड पैलेस सुक्रपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: FM अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभाव मोबाइल नंबर 98 41 28 98 20 मोबाइल नंबर

0: बसन्तपुर न्यू रोड दमकल नजिक स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक मुनी संपर्क नंबर 5320711 9820276888
1: जे जे ज्वेलर्स शुद्धता को पहचान।

6 बजे। अब FM अध्यात्म ज्योति 104.8 MHz को संध्याकालीन प्रसारण प्रारम्भ हुन्छ। FM अध्यात्म ज्योति प्रस्तुत गर्दछ संध्याकालीन सेवामा शुभ संध्या।

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैं भरि।
1: एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8।

मिट्टी में बंदी बनाकर उसे अपना आहार बना लेता है। इंद्र को ग्रास बनाकर खा जाने वाले वृत्रासुर से भयभीत देवतागण इंद्र की मुक्ति का उपाय पूछने के लिए देवगुरु बृहस्पति के पास पहुंचते हैं। देवगुरु बृहस्पति इंद्र की अर्धांगिनी शचि को शक्ति आराधना का परामर्श देते हैं। शचि अपने पति की प्राण रक्षा के लिए जब माता शक्ति का आह्वान करती है तो माता शक्ति आकाशवाणी द्वारा शचि को आश्वासन देती है कि उसके पति इंद्रदेव योग माया के प्रभाव से शीघ्र ही सकुशल वृत्रासुर के उदर से बाहर आ जाएंगे। योग माया के प्रभाव से निद्रा मग्न वृत्रासुर जमुहाई लेता है तो इंद्र बाहर आकर स्वर्ग से पलायन कर जाते हैं। चेतना लौटने पर वृत्रासुर देवताओं से इंद्र के बारे में पूछता है तो कोई देवता इंद्र के बारे में बता नहीं पाता। तत्पश्चात इंद्र तथा देवतागण भगवान शिव की शरण में कैलाश पहुंचते हैं तथा वृत्रासुर के संहार की प्रार्थना करते हैं। भोलेनाथ देवताओं को परामर्श देते हैं कि वृत्रासुर का अंत शक्ति से नहीं युक्ति से ही किया जा सकता है, इसलिए इंद्र के लिए उससे मित्रता करना ही कार्यकारी होगा। इंद्र तत्पश्चात स्वर्ग पहुंचता है तो वृत्रासुर के राक्षस उसे पकड़कर वृत्रासुर के पास ले आते हैं। इंद्र युक्ति का प्रयोग करके वृत्रासुर को मित्र बना लेता है। इंद्र के वाक जाल में फंसकर वृत्रासुर उसे गले लगा लेता है। वृत्रासुर को मित्र बनाकर इंद्र उसका विश्वास अर्जित कर लेता है और फिर ब्रह्मा जी के वरदान की सीमाओं में रहकर कपट पूर्वक संध्या काल में अपने वज्र से उसका वध कर देता है। मरते समय वृत्रासुर आर्तनाद करता है जिसे सुनकर त्वष्टा का कोप जाग उठता है। वो अपने शक्ति यज्ञ से काले रंग की ब्रह्म हत्या उत्पन्न करके इंद्र को शाप देता है कि वो ब्रह्म हत्या के पाप से कलंकित हो जाए। ब्रह्म हत्या के स्पर्श से इंद्र के शरीर का वर्ण काला हो जाता है। बृहस्पति उसे प्रायश्चित करने का परामर्श देते हैं। तत्पश्चात देवगुरु बृहस्पति सप्तर्षियों का आह्वान करके स्वर्ग के सिंहासन पर बैठने की योग्यता रखने वाले विशिष्ट व्यक्ति के विषय में पूछते हैं। सप्तर्षि सोच विचार के पश्चात शिव भक्त नहुष को इंद्र के स्थान पर प्रतिष्ठित करने का परामर्श देते हैं। सप्तर्षियों के परामर्शानुसार देवगुरु बृहस्पति पृथ्वीवासी शिव भक्त नहुष को स्वर्गलोक आमंत्रित करके उसे स्वर्ग के सिंहासन पर आसीन कराते हैं। उधर इंद्र के वियोग से दुखी इंद्राणी शचि माता शक्ति से प्रार्थना करती है। माता शक्ति प्रत्यक्ष प्रकट होकर कहती है कि उसका पति इंद्र जीवित है तथा मान सरोवर में शिवाराधना करते हुए ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित कर रहा है। शचि की प्रार्थना पर माता शक्ति उसे मान सरोवर पहुंचने का आशीर्वाद देती है।

0: Shachi.
1: Swami! Swami, come
0: Shachi.
1: Help! Swami! Swami!
0: Shachi?
1: Swami! Swami, kahan hai aap?
0: Shachi! Shachi! Main yahan hoon!
1: Kahan hai Swami? Swami, kahan hai?
0: Maan Sarovar ke jal mein. हत्या के पाप का प्रायश्चित कर रहा हूं
1: स्वामी।
0: जब तक भगवान शिव शंकर की कृपा से यह प्रायश्चित पूर्ण नहीं हो जाता तब तक मुझे इसी स्थान पर रहना होगा। परंतु आश्चर्य है तुम यहां कैसे पहुंची और तुम्हें इस स्थान के विषय में किसने बताया?
1: शक्ति ने, माता शक्ति मेरी आराधना से प्रसन्न हुई और
0: मैं समझ गया शची, शिव सती की कृपा के बिना किसी विपत्ति का अंत नहीं होता। हमारी इस विपत्ति का भी अंत अब निकट है।
1: जब तक ऐसा नहीं होता स्वामी मैं आपके साथ ही रहूंगी।
0: नहीं नहीं शची, अपने अपराधों का प्रायश्चित हर व्यक्ति को स्वयं करना होता है। तुम तो पुण्यशालिनी पतिव्रता हो, तुमने कोई अपराध नहीं किया, प्रायश्चित तुम क्यों करोगे?
1: अपने पति का साथ निभाना हर पतिव्रता का प्रथम कर्तव्य है स्वामी। आप कष्ट भोगते रहे और मैं देखती रहूं, ये नहीं हो सकता स्वामी, ये नहीं हो सकता है। मैं भी यही आपके साथ ही रहूंगी स्वामी।
0: नहीं देवी शची, मेरी बात और स्वर्ग लौट जाओ। स्वर्ग के साम्राज्य का पद तुमसे कोई नहीं छीन सकता। स्वर्ग में रहकर वहां पर होने वाली घटनाओं पर दृष्टि रखो, बस इस समय यही तुम्हारा कर्तव्य है।
1: स्वामी माता शक्ति ने प्रसन्न होकर मुझे ये वरदान दिया है कि आप स्वर्ग सिंहासन पर पुनः आसीन होंगे। चलिए स्वामी, मैं आपको स्वर्ग ले जाने के लिए आई हूं।
0: नहीं शची, जब तक भगवान शिव शंकर मुझे ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त नहीं कर देते मैं यहां से नहीं निकल सकता।
1: प्रायश्चित होने तक मैं यहीं रहना चाहती हूं स्वामी। यदि आप मुझे पहले बता देते तो मैं आपका साथ कभी ना छोड़ती।
0: अब तो माता शक्ति ने तुम्हें वरदान भी दे दिया, तुम्हारे पुण्य प्रताप से मैं स्वर्ग का सिंहासन पुनः प्राप्त करूं।
1: मैं आपसे विनती करती हूं स्वामी, मुझे यही रहने दीजिए। आपके बिना स्वर्ग मेरे लिए नरक के समान है स्वामी।
0: नहीं शची, तुम यहां रहोगी तो मेरे प्रायश्चित में बाधा उत्पन्न होगी। मेरी बात मानो और स्वर्ग लौट जाओ, वहां मेरे आने की प्रतीक्षा करो।
1: जो आ गया स्वामी, मैं स्वर्ग में आपकी प्रतीक्षा करूंगी। हे भगवान आशुतोष, मेरे स्वामी को शीघ्र ही ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त कीजिए।

0: चंद्रपुर न्यू रोड दमकल नजिक स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक मुनी। संपर्क नंबर 5320411 9802076788।
1: जे जे ज्वेलर्स, शुद्धता को पहचान।

0: नृत्य बंद क्यों कर दिया?
1: आपसे एक विशेष निवेदन है स्वर्गाधिपति।
0: कहो क्या बात है?
1: किंतु महाराज,
0: हमें एकांत चाहिए। कहो क्या बात है?
1: अपराध क्षमा हो महाराज। स्वर्ग के सिंहासन पर हमने सदा ही देवराज इंद्र के साथ महारानी शची को बैठे देखा है। उनके बिना ये सिंहासन सूना सूना लगता है।
2: आप ही बताइए महाराज, इस सूने सिंहासन के सम्मुख हमें नृत्य का उत्साह कैसे जागेगा?
0: तो क्या स्वर्ग साम्राज्ञी देवी शची हमारे साथ इस सिंहासन पर बैठना स्वीकार करेंगी?
1: महाराज, स्वर्गाधिपति की इच्छा का सम्मान करना उनका कर्तव्य है। यदि आप आज्ञा दें तो हम स्वयं जाकर आपका प्रस्ताव उन तक पहुँचा सकते हैं।
0: तो स्वर्ग की महारानी शची तक हमारा ये संदेश पहुंचा दिया जाए। स्वर्ग के सिंहासन पर सदैव उनका स्वागत है।
2: जो आ गया महाराज।

0: यदि उसके मन में वासना का विकार उत्पन्न हो जाता है तो उसका पतन निश्चित हो जाता है।
1: महाराज की जय हो।
2: क्या कहा देवी शची?
3: अपराध क्षमा हो स्वर्गाधिपति, किंतु देवी शची आपका संदेश सुनकर भयभीत हो गई हैं।
2: भय? हमसे कैसा भय?
3: यदि उन्होंने आपका प्रस्ताव स्वीकार किया तो सर्वत्र उनकी निंदा होने लगेगी और ये देवराज इंद्र के प्रति भी अपराध होगा।
2: इस समय स्वर्ग के सम्राट हम हैं, इंद्र नहीं। स्वर्ग के सिंहासन पर महारानी शची का भी उतना ही अधिकार है जितना कि मेरा है। जो भी व्यक्ति इस सिंहासन पर बैठता है उसका संबंध महारानी शची से अपने आप जुड़ जाता है।
3: परंतु महाराज, उन्हें यहाँ आने में संकोच हो रहा है।
2: उनका संकोच हम दूर करेंगे। कहाँ है वो?
3: नंदनवन में।
2: नंदनवन में?

और पति का कल्याण कैसे संभव है? माता शक्ति की आशीर्वाद को भूल गई शची? माता शक्ति ने स्वयं ही कहा है कि एक दिन देवराज इंद्र स्वर्ग सिंहासन पर पुनः प्रतिष्ठित होंगे। किंतु नहुष के होते हुए देवराज इंद्र स्वर्ग सिंहासन पर नहीं बैठ सकते, अर्थात नहुष सदा के लिए स्वर्ग का स्वामी नहीं है। उसके सम्मुख आने पर मुझे क्या करना होगा? वो स्वयं नरगामी हो रहा है शशि। तुम्हें अपने कुटी विवेक द्वारा उसके नर्क जाने का मार्ग प्रशस्त करना होगा। तुम्हारे और तुम्हारे पति देवराज इंद्र के कल्याण के लिए एकमात्र उपाय यही है

0: महाराज नहुष का स्वागत है।
1: ये आप क्या कह रही हैं? आप तो स्वर्ग की साम्राज्ञी हैं, फिर मेरे सम्मुख नतमस्तक क्यों?
0: स्वर्ग साम्राज्ञी हूँ नहीं महाराज, थी।
1: स्वर्ग के सिंहासन पर आज भी आपका उतना ही अधिकार है जितना कि पहले था।
0: भला ये कैसे संभव है महाराज? इस समय स्वर्गाधिपति तो आप हैं, मेरे पति देव इंद्र तो नहीं।
1: देवी, आप ये न भूलें कि आप स्वर्गाधिपति की पत्नी हैं और स्वर्गाधिपति के संपूर्ण अधिकार अब मेरे पास हैं।
0: आप सर्वदा स्वर्ग सिंहासन के योग्य हैं महाराज।
1: फिर आपको मेरा प्रस्ताव स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए देवी। जैसे इंद्र के साथ आप स्वर्ग के सिंहासन की शोभा बढ़ाती थी, उसी प्रकार हमारे साथ थे।
0: मैं एक देव पत्नी हूँ, भला ये कैसे संभव है? क्या ये धर्म और मर्यादा के विपरीत नहीं होगा?
1: आप हमें हमारे अधिकारों से वंचित कर रही हैं देवी। अब स्वर्गाधिपति इंद्र नहीं हम हैं, नारी पुरुष का आभूषण है और स्वर्ग सिंहासन आपके बिना अधूरा लगता है।
0: स्वर्ग में अनेकों सुंदर अप्सराएं हैं महाराज, आप उनमें से किसी को भी अपने स्वर्ग सिंहासन की शोभा बना सकते हैं।
1: स्वर्ग सिंहासन पर बैठने का अधिकार आपका है देवी, अप्सरा का नहीं।
0: पर पुरुष के साथ स्वर्ग सिंहासन पर मेरा बैठना क्या धर्म संगत है? क्या इसे एक पतिव्रता नारी की मर्यादा कलंकित नहीं होती?
1: इसे धर्म संगत बनाने के लिए मैं आपसे विधिवत विवाह करूंगा।
0: विवाह? अपने सुहाग की रक्षा और पति कल्याण की कामना है पतिव्रता का प्रथम कर्तव्य है, भले इसके प्राण क्यों न चले जाए।
1: देवी कहाँ खो गई? विवाह ही हमारे संबंध को धर्म संगत बनाएगा। यदि आप स्वीकृति दें तो शीघ्र विवाह का प्रबंध करूं।
0: तुम्हें अपने बुद्धि विवेक द्वारा उसके नर्क जाने का मार्ग प्रशस्त करना होगा। तुम्हारे और तुम्हारे पति देवराज इंद्र के कल्याण के लिए एकमात्र उपाय यही है।
1: क्या सोच रही हो देवी?
0: इतने अधीर क्यों हो रहे हैं महाराज? हमें भी तो इस विषय पर विचार करने दीजिए ना।
1: हमारे धैर्य की सीमा समाप्त हो चुकी है देवी। यदि आप सहमत हैं, तो विचार करने का समय क्यों? आज्ञा की।
0: आप स्वर्ग के महाराज हैं, एक दासी स्वामी को आगे कैसे दे सकती है?
1: ऐसा न कौशल जी, तुम स्वर्ग की स्वामिनी नहीं मेरे हृदय स्वामिनी भी हो।
0: यदि आप मुझे अपनी जीवन संगिनी बनाना ही चाहते हैं तो ये मेरे लिए गौरव की बात होगी, मैं निंदनीय नहीं रहूंगी।
1: देवी मैं धन्य हुआ, मेरी आत्मा तृप्त हुई, मैं इसी समय आपसे पुनः संबंध स्थापित करता हूँ।
0: यदि आप मुझे अपनी जीवन संगिनी बनाना ही चाहते हैं तो मेरी आपसे एक प्रार्थना है।
1: प्रार्थना क्यों? आज्ञा दो देवी।
0: जिन सप्तऋषियों ने आपको स्वर्ग सिंहासन पर आसीन किया है, आप वर रूप में अपनी डोली उन्हीं से उठवा कर लाएं।
1: सप्तऋषि डोली उठा कर लाएं? इससे तुम्हें क्या लाभ होगा?
0: मैं पतिव्रत धर्म को छोड़कर आपकी होने जा रही हूँ। यदि सप्तऋषि आपकी डोली उठाकर मेरे द्वार तक आएंगे तो इसे उनकी मान्यता प्राप्त हो जाएगी और ये विवाह धर्म अनुसार माना जाएगा।
1: आपकी आज्ञा का पालन होगा देवी, सप्तऋषि ही हमारी डोली उठा कर लाएंगे।

0: महत्वपूर्ण घोषणा करना चाहते हैं। स्वर्ग साम्राज्ञी महारानी शची हमसे विवाह करेंगी।
1: देवी शची आपसे विवाह करेंगी? भला ये कैसे संभव हो सकता है महाराज?
0: क्यों नहीं, हम स्वर्ग के सम्राट हैं, हमसे विवाह करना महारानी शची का अधिकार और कर्तव्य है। हम धर्म पूर्वक सप्त ऋषियों को साक्षी बनाकर महारानी शची से विवाह करेंगे।
1: धर्म प्रवर्तक, धर्म रक्षक, विधि के नियमों से बाध्य धर्म पालक सप्त ऋषि क्या इस विवाह की अनुमति देंगे?
0: जिन सप्त ऋषियों ने हमें आग्रह पूर्वक स्वर्गाधिपति बनाया वे हमें इस विवाह में अवश्य सहयोग देंगे। देवगुरु, हम विवाह के लिए जिस पालकी में बैठ कर जाएंगे उस पालकी को सप्त ऋषि ही उठाएंगे।
1: ये कैसे संभव है महाराज? ये आप क्या कह रहे हैं?
0: हाँ, सप्त ऋषियों को शीघ्र यहां बुलाया जाए, उनसे कहा जाए कि यह महाराज नहुष का आदेश है।
2: महाराज नहुष के आदेशानुसार सप्तर्षि नहुष की पालकी लेकर इंद्राणी के पास जाते हैं।
0: शीघ्रता करो ऋषियों, हमें शीघ्र शची के पास पहुंचना है।

0: हो गए।
1: भार बहुत अधिक है नहुष, हम सब थक गए हैं।
2: इससे और शीघ्र गति से हम नहीं चल सकते नहुष।
0: जानते हुए तुम्हारा धीमापन हमें कितना विवल कर रहा है। हम स्वर्गाधिपति हैं, हमारी आज्ञा का पालन करो, शीघ्र चलो। मैं कहता हूं सर्प की भांति
1: हमारे कंधों पर पाप का भार इतना बढ़ गया है नहुष कि आगे बढ़ना कठिन हो रहा है।
0: मेरा पाप बढ़ गया? मेरी आज्ञा का पालन करो तुम लोग। इष्ट सप्तऋषियों, तुम लोग मेरी आज्ञा

विचार तथा ऋषियों के अपमान से शापित हुआ तथा भयानक सर्प बनकर नरक यातना भोगने के लिए स्वर्ग से पतित हो गया।

0: ओमकारेश्वर भगवान श्री शिव शंकर की जय।
1: गुरुदेव, ओंकार शब्द एवं ध्वनि क्या भगवान शिव के ही प्रतीक है?
0: तुमने सत्य कहा भाई, सत्य कहा। इस ओंकार से ही भगवान शिव का परम प्रिय पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय प्रारंभ होता है। इस ओंकार ध्वनि में ही शिव तत्व का सार समाया हुआ है।
2: गुरुदेव, क्या ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का संबंध इसी ओंकार ध्वनि से है?
0: उत्तम प्रश्न है, अति उत्तम प्रश्न है। ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षरी मंत्र द्वारा तपस्या करने पर ही महाराजा मानधाता तथा विंध्य पर्वत ने भगवान शिव को प्रसन्न किया था। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना में महाराजा मानधाता तथा विंध्य पर्वत दोनों निमित्त बने।
3: गुरुदेव, आपने हमें कई ज्योतिर्लिंगों की कथा सुनाई, आज हमें ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाइए।
0: अवश्य सुनाता हूं। कथाएं बड़ी विचित्र हैं। महाराजा मानधाता तथा विंध्य की शिव आराधना के उद्देश्य भिन्न भिन्न थे, किंतु भगवान शिव शंकर दोनों पर प्रसन्न हुए। इसके फलस्वरूप नर्मदा के तट पर दो ज्योतिर्लिंगों की स्थापना हुई।
1: गुरुदेव, क्या नर्मदा नदी के तट पर दो दो ज्योतिर्लिंगों की स्थापना हुई है?
0: हां भक्त, तुम्हारा अनुमान सही है। नर्मदा नदी का पावन जल भगवान शिव को विशेष प्रिय है, इसीलिए वहां के लोगों में एक मान्यता प्रचलित है। नर्मदा के जितने कंकर उनका नाम है शंकर। किंतु इन दोनों ज्योतिर्लिंगों की विशेष महत्ता है।
1: गुरुदेव, क्या इन दोनों ज्योतिर्लिंगों का नाम ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग ही है?
0: नहीं नहीं भक्त, नर्मदा के उस पावन तट पर दो ज्योतिर्लिंग आमने सामने हैं। एक का नाम है ओमकारेश्वर और दूसरे का नाम है अमलेश्वर। यही अमलेश्वर वहां की लोक भाषा में ममलेश्वर के नाम से भी प्रसिद्ध है। बोलो ओमकारेश्वर ममलेश्वर ज्योतिर्लिंगों की जय। भक्तो, अब मैं तुम्हें इन दोनों ज्योतिर्लिंगों की कथा सुनाता हूं। यह कथा परम शिव भक्त महाराज मानधाता से संबंधित है।
4: महा

0: महाराज की जय हो। महाराज, राज सिंहासन पर स्वयं में विराजमान होकर आपने अपना राजमुकुट क्यों स्थापित कर दिया?
1: अब मैं इस राजमुकुट का बोझ नहीं उठा सकूंगा, इसीलिए राज सिंहासन और राजमुकुट दोनों का ही सदा सदा के लिए त्याग कर रहा।
0: नहीं महाराज, नहीं, आप ऐसी अप्रिय बात ना कहिए। आपके शब्द हमारे कानों में गर्म लावे की भांति पीड़ा पहुंचा रहे हैं।
1: मैंने पीड़ा पहुंचाने के उद्देश्य से ये बात नहीं कही है महामंत्री। ये तो मेरे हृदय में उमड़ती वैराग्य की वाणी है। आज से मैं इस राजभवन का सदा के लिए त्याग कर रहा हूं।
2: नहीं महाराज, नहीं, ऐसा ना कहिए महाराज।
3: ये हमारे प्रति अन्याय है महाराज।
4: नहीं महाराज, आप अपना निर्णय बदल दीजिए।
1: ये निर्णय मैंने बहुत सोच विचार के पश्चात किया है।
0: ऐसा कठोर निर्णय किस लिए महाराज?
1: आज तक मैं अपने आप में भटका हुआ था, किंतु अब मैं अपने आप से मुक्त होना चाहता हूँ। सारे बंधनों को अब तोड़ देना चाहता हूँ।
4: महाराज, आप पर हमारा भी कुछ अधिकार है। महाराज, आप हमारे पालक पिता हैं, हमारे रक्षक हैं।
0: आपकी छत्र छाया के बिना हम सब अनाथ हो जाएंगे महाराज, हम सब अनाथ हो जाएंगे।
1: भगवान शिव शंकर ही हम सबके नाथ हैं। मैं अब उन्हीं की शरण में जा रहा हूं।
4: हम आपको नहीं जाने देंगे महाराज।

0: क्या आपने राज सिंहासन का त्याग कर दिया है?
1: क्या ये सच है पिताश्री?
0: हाँ पुत्र,
1: ये सच है। मैं आज से राजसत्ता, राजभवन सब कुछ त्याग रहा हूं।
2: ऐसा कठोर निर्णय लेने से पहले आपने हमें बताया तक नहीं?
0: पूज्यतात, क्या हम दोनों भाइयों से कोई अपराध हुआ है?
1: नहीं, आप दोनों भाइयों को मैंने ऐसे शुभ संस्कार दिए हैं, क्या आप भूल से भी कोई अपराध नहीं कर सकते? ये निर्णय मैंने स्वेच्छा से लिया है।
2: परंतु आपके कठोर निर्णय का उद्देश्य क्या है?
1: शुभ, केवल शुभ।
0: दिन रात आप शिव की भक्ति ही तो किया करते हैं पिताश्री, सभी मानते हैं आप राजा से पहले शिव भक्त हैं।
2: पूरे राज्य में आपने शिव मंदिरों की श्रृंखला खड़ी कर दी है, संपूर्ण राज्य शिवमय हो गया है।
0: क्या आप इतनी शिव भक्ति से भी असंतुष्ट हैं?
1: नहीं वत्स, शिव भक्ति करते हुए मैंने राज सत्ता का मोह नहीं छोड़ा और इसीलिए मुझे आज तक शिव कृपा प्राप्त नहीं हुई। अब मैं किसी तपोभूमि में जाकर निर्मोह होकर तप करूंगा।
0: क्या आपकी दृष्टि में भक्ति और तप में अंतर है?
1: बहुत बड़ा अंतर है पुत्र। भक्ति करते हुए देहबोध और कर्मबोध शेष रहता है, किंतु तप का मात्र एक ही उद्देश्य रहता है, सब कुछ भूलकर सच्चिदानंद परमेश्वर शिव के चरणों में समर्पित हो जाना। जब समर्पण का यही बोध अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है तो भक्त और भगवान एकाकार हो जाते हैं।
2: पिताश्री, आप ही ने हमें समय समय पर उपदेश दिया है कि तन मन से प्रजा की सेवा भी एक प्रकार की तपस्या है।
1: अब इस उपदेश का पालन आप दोनों भाइयों को करना है। मेरी तो अंतिम इच्छा यही है कि इसी जीवन में परमेश्वर शिव शंकर के साक्षात दर्शन करूं या उन्हीं की आराधना करते करते प्राणोत्सर्ग कर दूं।
3: पहले सुन रहे हैं इंचार्ज FM अध्यात्म ज्योति 104.8।

काम भक्ति की भावना जागृत होती है, मनुष्य सारे सांसारिक सुखों को त्याग कर भक्ति मार्ग की ओर चल पड़ता है। राजा मानधाता, आप धन्य हैं, अपने आप को भगवान शिव को समर्पण करके समस्त राजपाट को त्याग कर आप शिव भक्ति में लीन हो गए। आपकी शिव भक्ति धन्य है।

0: गोविंद आपकी सेवा में उपस्थित है महाराज मानधाता।
1: मैं अब महाराज नहीं, केवल मानधाता हूं विंध्यराज। आपकी इस पवित्र भूमि पर भगवान भोलेनाथ का तप करने की अनुमति चाहता हूं।
0: यह तो परम सौभाग्य की बात है, किंतु यह तो बताइए शिवभक्त, आपने इस स्थान को अपनी तपोभूमि बनाने का निश्चय क्यों किया?
1: पर्वतराज, संस्कार की प्रेरणा से ही संस्कार की उत्पत्ति होती है। इस धरती के सौंदर्य से मुग्ध होकर ब्रह्मा ने यहां ब्रह्मपुरी, विष्णु ने वैकुंठपुरी और भगवान शिव ने रुद्रपुरी का निर्माण किया था। इन्हीं तीनों पुरियों को त्रिपुरी भी कहते हैं। ये वही पावन स्थान है जहां देवताओं की प्रार्थना से प्रसन्न होकर स्वयं भोलेनाथ अमलेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है। महान ऋषि मुनियों ने इसी तपोभूमि पर अपनी सिद्धियां भी प्राप्त की है।
0: धन्य धन्य, आप शिव भक्त ही नहीं परम ज्ञानी भी हैं। आप निर्विघ्न तप आरंभ करें, मैं आपकी सफलता के लिए हृदय से शुभकामना व्यक्त करता हूं।
1: आपकी शुभकामना लक्ष्य प्राप्ति में मेरी सहायक होगी।
0: आपकी सफलता मेरे भविष्य की एक कल्पना से जुड़ी हुई है शिव भक्त।
1: आपके भविष्य की कल्पना, मैं समझा नहीं पर्वतराज।
0: एक दिन आपकी निष्ठा भक्ति और तप से प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ आपको अवश्य दर्शन देंगे, तब आप मेरे लिए भी एक वर मांग लीजिएगा।
1: क्या वर मांगना है आपके लिए?
0: यही कि भगवान भोलेनाथ मुझे मेरु पर्वत से भी ऊंचा बनाने की कृपा करें। किस विचार में पड़ गए महाराज? निर्विघ्न तप आरंभ कीजिए, आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी।

0: जो चाहो वो बनवा।
1: ओंकार स्वरूप नर्मदा के पावन तट पर ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में आप सदा विराजमान रहे, और जो भी प्राणी भक्ति भावना से अपनी मनोकामनाओं के साथ आपकी शरण में आए उसकी इच्छा पूर्ण करे प्रभु,
0: तथास्तु।

0: बिहान को 5 बजिसके अब एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8 मेगाहर्ज को नियमित प्रसारण आरंभ हो। प्रसारण प्रारंभ में आज को पंचांग।
1: आज श्री सालीबहानीय साखे 1948 सृष्टितो गताब्दा 1955-88 5127 कलेर गताब्दा 5127 साठी संवत्सर मध्ये 54 संवत्सर रौद्र नामक संवत्सर नेपाल देशीय संवत 1146 विक्रम संवत 2083 साल भाद्र महिनाको 9 गते मंगलबार तदनुसार अगस्त महिनाको 25 तारिक सन 2026 श्रावण शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि उत्तर फाल्गुडी नक्षत्र आद्र आनन्दादि योग कौलभ कर्ण मानस योगा आज चन्द्रमा मकर राशिमा अवस्थित श्री सूर्य दक्षिणायण यो महिना श्री सूर्य सिंह राशिमा अवस्थित आज काठमाडौँमा अहिले 5:39 सूर्योदय हुनेछ।
0: अध्यात्म ज्योति प्रस्तुत गर्दछ कार्यक्रम आराधना।
1: शुभ प्रभात एवं नमस्कार। यो प्रभात कालिनीय कार्यक्रम आराधनामा म प्रस्तोता युवेन्द्र। अब आजको यो कार्यक्रम आराधनालाई सदा चाहिँ अगाडि बढाउँदै छु हस्त दर्शन एवं भूमि वन्दनाबाट।